0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Murka, murka. Navid wala murka. Mirchi, murka.
3: Hello.
4: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी, हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35 / 14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
4: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: क्या रूम
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

अब इतनी गर्मी है कि आइसक्रीम भी पिघलते पिघलते बोल रहा है कि बॉस आज मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पे पार्टी करना कभी नहीं छोड़ते। इस वीकेंड पे भी क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन द कार।

बॉस, अगर गर्मी नहीं लग रही है तो डांस करो, हीट योर बॉडी, और अगर गर्मी लग रही है तो भी डांस करो। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ, लेट्स गो।

बाहर धूप फुल एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन हमारा प्लेलिस्ट हॉट भी कूल भी, सर्दी गर्मी एक साथ। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वेलकम बैक पीप्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर 1 रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vieta la burka. Mirchi, burka.
2: Hello? Hello?
3: Sir, very good evening, man. Bank support.
2: हाँ बोलिए
3: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
3: सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
2: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
3: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: पागल पागल है क्या?
3: आप तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो.
3: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे.
3: अब तो फंस गए सर.
2: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
2: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे. मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
4: हाँ जी. अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

अब इतनी गर्मी है कि आइसक्रीम भी पिघलते पिघलते बोल रहा है कि बॉस आज मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पे पार्टी करना कभी नहीं छोड़ते। इस वीकेंड पे भी क्लब मिर्ची जा रही है।

बकवास, अगर गर्मी नहीं लग रही है तो डांस करो, हीट योर बॉडी, और अगर गर्मी लग रही है तो भी डांस करो। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ, लेट्स गो।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन

आज रात कैलोरीज काउंट मत करो यार, बस बीट्स काउंट करो. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ. इफ यू लाइक व्हाट डीजे रिचर्ड डज विद म्यूजिक, फॉलो डीजे रिचर्ड ऑफिशियल.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 5/14A फर्स्ट फ्लोर नगर. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनसाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम. ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आप क्या वक्त लिया? आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

ऑफिशियल टेम्परेचर 40 हो या 45 डिग्रीज, क्लब मिर्ची का मूड साइंटिफिक कैलकुलेशन के बाहर है कि नहीं? क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची अयोंतिका।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

वेलकम बैक वंस अगेन डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ। दो तरह के लोग होते हैं समर में, एक एसी के सामने बैठे होते हैं और दूसरे क्लब मिर्ची के स्पीकर के सामने हेड बैंग कर रहे हैं। विच टाइप आर यू? आई एम श्योर सेकंड। लेट्स गो।

वेलकम बैक डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ। वेदर ऐप बोल रहा है कि हीट वेव और हम बोल रहे हैं कि बीट वेव। इधर बीपीएम भी टेम्परेचर से ज्यादा है बॉस। क्लब मिर्ची रेस विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका। चले फिर

मैंने जा ढूंढता तू ओ मेरे दिल के चैन, रोमांस सो क्लासिक, इवन ऑटो ट्यून टेक्स नोट्स. लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका.

वेलकम बैक वंस अगेन टीचर रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ। दो तरह के लोग होते हैं समर में, एक एसी के सामने बैठे होते हैं और दूसरे क्लब मिर्ची के स्पीकर के सामने हेड बैंग कर रहे हैं। विच टाइप आर यू? आई एम श्योर सेकंड। लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनशाइन कैंसिल है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम. ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: तो मैं आपको, अरे मैडम,
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या हूँ
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

बाहर धूप फुल एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन हमारा प्लेलिस्ट हॉट भी कूल भी, सर्दी गर्मी एक साथ। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वेलकम बैक पीप्स।

0: समर क्रश मिल जाए या ना मिले, क्लब मिर्ची पे डांस रश मिलना गारंटीड है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर।
1: साहिबा आए घर का है ना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो हेलो
2: सर वेरी गुड इवनिंग मैं बैंक से बोल रहा हूँ
1: हाँ बोलिए
2: सर आई एम सो सॉरी सर बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का
1: बनवाया था भैया क्या हो गया नहीं क्या बात है
2: सर

0: किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: से बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
0: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
0: आई एम सो सॉरी सर, मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
0: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
1: पागल पागल है क्या?
0: अब तो देने पड़ेंगे सर।
1: हेलो
0: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
0: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
1: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे।
0: अब तो फंस गए सर।
1: हेलो
0: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ। सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
0: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
0: जी अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: On a ride.

अब इतनी गर्मी है कि आइसक्रीम भी पिघलते पिघलते बोल रहा है कि बॉस आज मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पे पार्टी करना कभी नहीं छोड़ते। इस वीकेंड पे भी क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन दिखा।

बिकॉज अगर गर्मी नहीं लग रही है तो डांस करो, हीट योर बॉडी, और अगर गर्मी लग रही है तो भी डांस करो। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ, लेट्स गो।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

कैलोरीज काउंट मत करो यार, बस बीट्स काउंट करो. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ. इफ यू लाइक व्हाट डीजे रिचर्ड डज विद म्यूजिक, फॉलो हिम, डीजे रिचर्ड ऑफिशियल.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी, हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: से डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल थोड़ी
4: जी। आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे? मैं सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: क्या
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

अब ऑफिशियल टेम्परेचर 40 हो या 45 डिग्रीज, क्लब मिर्ची का मूड साइंटिफिक कैलकुलेशन के बाहर है कि नहीं? क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट
1: विद मिर्ची, फ्रेश माल।
2: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
2: Club Mirchi.

एक्सक्यूजेस दोनों का लेवल हर साल अनएक्सपेक्टेडली बढ़ ही जाता है क्लब मिर्ची पे. हार्डनेस ज्यादा और पेशेंस कम. लेट्स गो.

हाई था, एनर्जी भी हाई थी और टेम्परेचर तो पूछो ही मत। पार्टी खत्म हो सकती है लेकिन वाइब का आफ्टर इफेक्ट वो तो चलेगा सुबह तक, है कि नहीं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे यार, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ क्लब मिर्ची पे लौटेंगे क्योंकि समर

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
1: हेलो
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: वाह मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
1: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
1: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
1: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
1: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
1: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
1: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
1: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
1: अच्छा
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
1: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
2: 3 सिटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
1: नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: जरा ये भी बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Pepe Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieta la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A, फर्स्ट फ्लोर, नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है ऊपर से, मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम,
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
3: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: सुन, पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके

0: फिर नहीं मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं, खाया भी नहीं है।
0: दोबारा कॉल करेंगे, आप क्या वक्त लिया, आप बड़े बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

Vamos, vamos.

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची।
2: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: समय
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
2: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? क्या नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
1: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे हैं आप, दिल्ली सुन रही है आपको, सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
0: दोबारा कॉल करेंगे, आपने क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virpa la burga.
2: Mirci, burga.
3: Alo? Alo?
4: Sir, very good evening, man. Bank to photo.
3: हाँ बोलिए
4: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
4: सर, सॉरी पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे ही कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल है क्या?
4: अब तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो
4: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे.

0: और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया।
1: उसके पैसे क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
0: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अभी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
0: हाँ जी, अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burka, burka. La virpa, la burka.
0: Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना। हाँ
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: हर फ्राइडे बॉलीवुड डिसाइड करता है कि इस हफ्ते कौन सी कहानी ट्रेंड करेगी, कौन सा हीरो मास्क लगेगा, कौन सा ट्रेलर इंटरनेट तोड़ देगा एंड कौन सा गाना शादियों में बजेगा। लेकिन असली सवाल हमेशा सेम रहता है, इस शोर में क्या टिकने वाला है, क्योंकि हाइप तो बहुत चीजों की बन जाती है लेकिन लेगेसी बहुत ही कम की होती है। एंड इस वक्त हिंदी सिनेमा एक अजीब से फेज में है। सुपरस्टार्स अब भी बड़े हैं लेकिन ऑडियंस उनसे भी बड़ी हो चुकी है। हम इंस्टेंटली जज करते हैं, इंस्टेंटली ट्रोल करते हैं, इंस्टेंटली वर्शिप करते हैं। एक रील करियर बना देता है और एक फ्राइडे नैरेटिव बदल देता है। लेकिन फिर भी हर हफ्ते कुछ गाने ऐसे आते हैं जो शोर को काट देते हैं, कुछ फिल्म्स जो सिर्फ चलती नहीं कल्चर बन जाती हैं, एंड कुछ आवाजें जो प्रूव करती हैं कि बॉलीवुड अभी भी दिल से जिंदा है। तो चलो इस हफ्ते के बिगेस्ट सॉन्ग्स, बिगेस्ट स्टोरीज और बिगेस्ट बॉलीवुड पल्स को डीकोड करते हैं। दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड आई एम योर होस्ट सुरेन सुंदरम। एंड गाड़ी शुरू होती है विद द मोस्ट डोमिनेंट फिल्म एंड उसका ये डोमिनेंट टाइटल ट्रैक आपने सुना है, बहुत बार सुना है।
4: नंबर 20

बॉलीवुड में अगर किसी कंपोजर ने हमें ये सिखाया है कि म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं फील किया जाता है, then it has to be A.R. रहमान। लेकिन रहमान साहब का म्यूजिक आजकल पहले जैसा इंस्टेंट हिस्टेरिया क्रिएट नहीं करता, और शायद वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो डिजाइन है। क्योंकि रहमान साहब के गाने फास्ट फूड की तरह, बर्गर्स पिज्जाज की तरह बिल्कुल नहीं होते। दे आर लाइक स्लो पॉइजन। पहली बार सुनो कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, दूसरी बार सुनो तो इंट्रीगिंग लगते हैं, और फिर एक दिन अचानक गाना आपके अंदर घर बना लेता है। रहमान साहब मेलोडी को स्पून फीड नहीं करते, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। टेक्सचर, साइलेंसेस, ट्रेन साउंड, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्गिंग, और इसीलिए उनके गाने वायरल कम होते हैं, डिस्कवर ज्यादा किए जाते हैं।

0: इनिशियली लोग बोल रहे थे ये तो बहुत डीप है, आज ये एक इमोशनल एंथम बन गया है। और अब मस्कारा को देखो, फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, इम्तियाज अली, दिलजीत दोसांझ, रहमान साहब, इरशाद कामिल, ये कोई लाउड चार्ट बस्टर नहीं है, ये वो टाइप का गाना है जो शायद 3 महीने बाद सडनली आपको हिट करेगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग म्यूजिक ट्रेंड यही होने वाला है, द स्लो बर्न एल्बम्स जो पहले ग्रो करती हैं और फिर एक्सप्लोर करती हैं। एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ विद चांद मेरा दिल। पहले लोग बोल रहे थे यार अच्छी एल्बम है, अब हर हफ्ते एक नया गाना इमर्ज हो रहा है और इस वक्त द लेटेस्ट वन इज मेकिंग सीरियस नॉइज। फ्रॉम चांद मेरा दिल, कंपोज बाय सचिन जिगर, राघव चैतन्य और जुनीता गांधी की आवाज में, दिस इज खासियत, डेब्यूइंग ऑन नंबर 18।
1: नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो हेलो
2: सर वेरी गुड इवनिंग बैंक से बोल रहा हूँ
1: हाँ बोलिए
2: सर आई एम सो सॉरी सर बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का
1: बनवाया था भैया क्या हो गया नहीं क्या बात
2: सर आई एम सो सॉरी पूरा बताइए
1: क्या करो भैया कहाँ क्या हो गया
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे यूज किया आपने कुछ परचेजिंग करी उससे
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो क्या कर रहे हो
2: आई एम सो सॉरी सर ऐसे कभी कभी हो जाता है सर उससे कुछ परचेज किया आपने
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया हेलो
2: आई एम सो सॉरी सर सर मैं आपसे कहना चाह रहा था सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था सर बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे कुछ खरीदा था
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा भैया पागल है क्या
2: आई एम सो सॉरी सर आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे
1: पागल पागल है क्या
2: आप तो देने पड़ेंगे सर
1: हेलो
2: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे

0: आप तो फंस गए सर।
1: हेलो सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
0: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
1: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
0: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी। अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पटाक।
3: सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। नंबर 14।

0: बॉलीवुड का मूड कितनी जल्दी स्विच होता है। अभी जो गाना आपने सुना प्रेम की लीला फ्रॉम कृष्णावतारम, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और जावेद अली ने। ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन है, ओल्ड स्कूल डिवोशन, नो ईडीएम ड्रॉप्स, ना कोई फोर्स्ड कूलनेस, बस सुर हैं, भाव हैं और सिंसियरिटी है। एंड देखो, ऑडियंस ने उसे सीधा दिल में जगह दे दी। डेब्यू किया इस गाने ने नंबर 14 पर, और शायद इसीलिए म्यूजिक का साइंस अब पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि कब क्या कनेक्ट कर जाए नोबडी नोज एनीमोर। और इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए था कॉकटेल का वो गाना जब तलक। यार जरा सोचो, अरिजीत सिंह, प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य, एंड देन यू गॉट शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन। ये लाइनअप देख के तो लगता है कि गाना चार्ट पे आएगा नहीं, सीधा कब्जा कर लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गाना आया तो सही, लेकिन इम्पैक्ट नहीं बना। इनफैक्ट टॉप 10 तक भी नहीं पहुंच पाया, और क्वाइटली इस काउंटडाउन से एग्जिट मार चुका है। और शॉक इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि शाहिद और प्रीतम दा का म्यूजिकल पार्टनरशिप तो हिस्टोरिकली लीथल रहा है।
1: साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे।
0: ये वो कॉम्बो है जो फुल मैडनेस को भी एक म्यूजिकल इवेंट बना देता था। इसके बाद जरा सा मूड स्विच कर लो।
1: मैं

0: आदमी खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देता है, वो भी बिना किसी रीजन के। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट दिस सॉन्ग।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
0: बस यार, ये गाना तो कल्चरली इमॉर्टल है। ऐसे गाने रिलीज नहीं होते, अडॉप्ट किए जाते हैं। इसलिए जब तलक का इतनी जल्दी फेड हो जाना जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड था एंड मेरे लिए काफी शॉकिंग भी। लेकिन फ्रीदंदा का गेम खत्म समझना गलती होगी। भूत बंगला का राम जी आके भला करेंगे नंबर 13 पर पहुंचा इस हफ्ते। लेकिन कॉकटेल का जो अपकमिंग गाना है माशू का, वो मैंने सुना है एंड दैट वन साउंड्स फार मोर डेंजरस। लेकिन अभी फ्रॉम एन ईरा व्हेन शाहिद कपूर एंड प्रीतम दा सिंपली कुड नॉट मिस, ये वाला गाना है फ्रॉम मौसम, जिसे गाया है शाहिद माल्या ने। रब्बा मैं तो मर गया ओए, माय पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: कभी कभी एक फिल्म खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। धुरंधर और धुरंधर 2 एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म्स निकली। सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं, कल्चरल टेकओवर किया, मीम्स आए, फैन एडिट्स आए, एक्शन सीन्स वायरल हुए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? डायलॉग्स जो है वो हमारे दिलो दिमाग में घुस गए। और ऑनेस्टली बॉलीवुड को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखो फिल्म्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन याद हमें बहुत कम रहती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, रोजमर्रा की भाषा हुआ करती थी। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। ये लाइन से स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थी, ये इंडिया का पॉप कल्चर सॉफ्टवेयर थी। लेकिन आज 1000 करोड़ की फिल्में आ रही हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही आधे से ज्यादा डायलॉग्स मेमोरी से लॉग आउट कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो फिल्म्स रियलिज्म में इतनी धीमी हो गई हैं कि कोई लाइन हवा नहीं पकड़ती, या फिर हर दूसरा डायलॉग एक मास मोमेंट बनने की इतनी कोशिश करता है कि असली स्वैग गायब हो जाता है। आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे नहीं जाते यार, वो फील होते हैं। और धुरंधर ने हमें याद दिलाया कि बॉलीवुड जब डायलॉगबाजी सही करता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ तालियां नहीं बजाती, वो डायलॉग्स घर ले जाती है। इस हफ्ते का गाना नंबर 4 इज ऑल्सो अ धुरंधर।
1: नंबर 4।

लेकिन अब एक स्पेशल गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसके डायलॉग्स लिटरली इंडियन पॉप कल्चर की परमानेंट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फ्रॉम जब वी मेट, कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखनी है ये भटिंडा की।

रूही दसदा ने सिर्फ चार्ट्स क्लाइंब नहीं किए, ऑनेस्टली उसने अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस कॉन्फिडेंस को CPR दे दिया है। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशंस थिएटर्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है। धुरंधर 2 द रिवेंज द सेकंड पार्ट बेसिकली, इंडिया में इसके OTT रिलीज का वेट इतना इंटेंस था ना कि लोग लिटरली काउंट डाउन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले एक प्लेटफॉर्म पे आनी थी और फिर 2 हफ्ते बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस भाई EMI लगने लगे थे। और फिर बीच में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया 14 मई को। बस गेम ओवर, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है कि इंटरनेट को ज्योग्राफी समझ नहीं आती। अगर आपकी फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई तो 2 घंटे में वो पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, और वो भी कोई 240 पिक्सल वो सिनेमा हॉल वाला प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं, जिसमें बीच में किसी की परछाई नजर आती है, पिक्चर हिल रही होती है या साउंड बिल्कुल बकवास होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर 4K फाइल। अब तो सोशल मीडिया पे लोग रिव्यूज से ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले लोग पूछते थे कि भाई स्टोरी कैसी है, अब लोग पूछ रहे हैं भाई लिंक है क्या तेरे पास। और ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि एक वक्त था जब पायरेसी कन्वीनियंस की वजह से होती थी, आज पायरेसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। ऑडियंस फिल्म देखना तो चाहती है, इनफैक्ट इमीडिएटली देखना चाहती है, लेकिन अफोर्डेबल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए एक आदमी को 3 apps, 4 passwords, 5 subscriptions और 15-20 ad से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए पायरेसी फिर से एक डरावना कमबैक कर रही है। और आयरनी देखो ना, जिस फिल्म को लोग इलीगली हंट कर रहे हैं उसी फिल्म का गाना 14 हफ्तों से इंडिया का नंबर 1 गाना बना हुआ है, फ्रॉम धुरंधर शरारत। और ये शरारत सच में महंगी पड़ गई। नंबर 1।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7।

0: Sayyara is one of the highest watched movies on Netflix aur isi hafte maine Netflix pe ek aur film dekhi Kartavya and I genuinely did not expect it. Saif Ali Khan is film mein outstanding hai yaar. Sach ye hai ki Bollywood mein kuch actors hain jinko dekh ke lagta hai ki shayad inhone apni zindagi mein kabhi auto tak nahi liya hoga. और फिर वही बंदा जब एक देसी यूपी बिहार का पुलिस वाला बनके स्क्रीन पे आता है और आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका ठहराव, उसकी आंखों की थकान बिलीव कर लेते हो ना, वो होती है एक्टिंग। और सैफ ने ये बार बार किया है। ओमकारा हो गई, लाल कप्तान, बीइंग साइरस, बंदा रिस्क लेता है और फेल भी होता है कभी कभी, लेकिन सैफ नेवर प्लेज इट सेफ। एंड सैफ के साथ है संजय मिश्रा। यार क्या एक्टर है, वो एक्टिंग कहां करते हैं एक्चुअली, वो तो बस हैं। ऐसे लोग परफॉर्म नहीं करते, वो हवा बदल देते हैं। एंड फिर इस पिक्चर में देखे सौरभ द्विवेदी, वही अपने लल्लन टॉप वाले, और इंटरनेट ने भाई साहब उन्हें ऐसे तोड़ा है ना जैसे वाइवा लेने वाले प्रोफेसर को अचानक एनुअल डे पे नाचने के लिए बोल दिया हो। देखिए क्रिटिसिज्म देना आसान है, इनफैक्ट बहुत आसान, हम सब करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन फिर खुद कैमरा के सामने आके ऐसे परफॉर्म करना जैसे स्कूल असेंबली में लास्ट मिनट पे किसी बच्चे को रोल करने के लिए बोल दिया हो, वो डेंजरस गेम है। सोशल मीडिया इसलिए इतना रूथलेस है क्योंकि ऑडियंस हिपोक्रेसी को इंस्टेंटली पकड़ लेती है, और ये जरूरी भी था। फिल्म को क्रिटिसाइज करना और खुद एक्टिंग करने में वही डिफरेंस है जो एक पॉडकास्ट में बैठ के क्रिकेट के बारे में बात करना है और एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बाउंसर को फेस करना है। लेकिन यस, In spite of Saurabh Dwivedi, please watch this film Kartavya for Saif Ali Khan and Sanjay Mishra. इसी बहाने एक अच्छा गाना सुनाने का भी मौका मिल गया है। सैफ की एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसने genuinely ऑडियंस को शॉक किया। It was cold, it was menacing, it was unpredictable. ये अब भी मेरी फेवरेट फिल्म है। ओमकारा से ये गाना है नमक, रेखा भारद्वाज जी की आवाज में।
1: Top 20 Rewind.

0: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiz wala murga.
1: Mirchi, murga. हेलो हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पक्का।
0: Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 5.

कभी कभी एक फिल्म खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। धुरंधर और धुरंधर 2 एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म्स निकली। सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं, कल्चरल टेक ओवर किया, मीम्स आए, फैन एडिट्स आए, एक्शन सीन्स वायरल हुए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? डायलॉग्स जो है वो हमारे दिलो दिमाग में घुस गए। और ऑनेस्टली बॉलीवुड को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखो फिल्म्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन याद हमें बहुत कम रहती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, रोजमर्रा की भाषा हुआ करती थी। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। ये लाइन्स स्क्रिप्ट्स का पार्ट नहीं थी, ये इंडिया का पॉप कल्चर सॉफ्टवेयर थी। लेकिन आज 1000 करोड़ की फिल्में आ रही हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही आधे से ज्यादा डायलॉग्स मेमोरी से लॉग आउट कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो फिल्म्स रियलिज्म में इतनी धीमी हो गई हैं कि कोई लाइन हवा नहीं पकड़ती, या फिर हर दूसरा डायलॉग एक मास मोमेंट बनने की इतनी कोशिश करता है कि असली स्वैग गायब हो जाता है। आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे नहीं जाते यार, वो फील होते हैं। और धुरंधर ने हमें याद दिलाया कि बॉलीवुड जब डायलॉग बाजी सही करता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ तालियां नहीं बजाती, वो डायलॉग्स घर ले जाती है। इस हफ्ते का कारण नंबर 4 इज ऑल्सो अ धुरंधर। नंबर 4।

लेकिन अब एक स्पेशल गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसके डायलॉग्स लिटरली इंडियन पॉप कल्चर की परमानेंट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फ्रॉम जब वी मेट, कोई डाउट मत रखना दिल में, सीखनी है ये बड़े।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
5: Number 3.
6: Wow.

रूही दसदा ने सिर्फ चार्ट्स क्लाइंब नहीं किए, ऑनेस्टली उसने अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस कॉन्फिडेंस को CPR दे दिया है। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशंस थिएटर्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है। धुरंधर 2 द रिवेंज द सेकंड पार्ट, बेसिकली इंडिया में इसके OTT रिलीज का वेट इतना इंटेंस था ना कि लोग लिटरली काउंट डाउन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले एक प्लेटफॉर्म पे आनी थी और फिर 2 हफ्ते बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस भाई EMI लगने लगे थे। और फिर बीच में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया 14 मई को। बस गेम ओवर, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है कि इंटरनेट को ज्योग्राफी समझ नहीं आती। अगर आपकी फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई तो 2 घंटे में वो पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, और वो भी कोई 240 पिक्सल वो सिनेमा हॉल वाला प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं, जिसमें बीच में किसी की परछाई नजर आती है, पिक्चर हिल रही होती है या साउंड बिल्कुल बकवास होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर 4K फाइल। अब तो सोशल मीडिया पे लोग रिव्यूज से ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले लोग पूछते थे कि भाई स्टोरी कैसी है, अब लोग पूछ रहे हैं भाई लिंक है क्या तेरे पास। और ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि एक वक्त था जब पायरेसी कन्वीनियंस की वजह से होती थी, आज पायरेसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। ऑडियंस फिल्म देखना तो चाहती है, इनफैक्ट इमीडिएटली देखना चाहती है, लेकिन अफोर्डेबल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए एक आदमी को 3 apps, 4 passwords, 5 subscriptions और 15-20 ad से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए पायरेसी फिर से एक डरावना कमबैक कर रही है। और आयरनी देखो ना, जिस फिल्म को लोग इलीगली हंट कर रहे हैं उसी फिल्म का गाना 14 हफ्तों से इंडिया का नंबर 1 गाना बना हुआ है, फ्रॉम धुरंधर शरारत। और ये शरारत सच में महंगी पड़ गई। नंबर 1

0: The Mania is still on, but Shararat बाकी गानों से ज्यादा पॉपुलर निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। एक और टाइटल ट्रैक है इश्क चला कर है, गहरा हुआ आरी आरी, इनको सुन के लगा था कि ये शायद आगे निकल जाएंगे, बट नो शरारत इट इज। बट हे, या मेरी थोड़ी ना चलती है, इट इज यू एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम मिर्ची टॉप 20 के एक नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो हेलो
2: सर वेरी गुड इवनिंग बैंक से बोल रहा हूँ
1: हाँ बोलिए
2: सर आई एम सो सॉरी सर बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का
1: बनवाया था भैया क्या हो गया नहीं क्या बात
2: है सर आई एम सो सॉरी पूरा बताइए
1: क्या करो भैया कहाँ क्या हो गया
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे यूज किया आपने कुछ परचेजिंग करी उससे
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो क्या कर रहे हो
2: आई एम सो सॉरी सर ऐसी कभी कभी हो जाता है सर उससे कुछ परचेज किया आपने
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया हेलो
2: आई एम सो सॉरी सर मैं आपसे कहना चाह रहा था सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था सर बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे कुछ खरीदा था
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा भैया पागल है क्या
2: आई एम सो सॉरी सर आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे
1: पागल पागल है
2: अब तो देने पड़ेंगे सर
1: हेलो
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे
1: कौन बोल रहा है विपिन
2: नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा बैंक का खाना खाना पड़ेगा बैंक के पैसे देने पड़ेंगे
1: अब
2: तो फंस गए सर
1: हेलो
2: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने एक मजाक किया छोटा सा मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था आपका मुर्गा बन गया है
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई देने पड़ेंगे
2: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे आप अभी नहीं समझे मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
2: जी अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana, rabana, burka, burka, na virtuala burka, Milci, burka!
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे?
3: मैं होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A, 1st floor. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनसाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम. ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

तेरा न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabbala. Burga, burga. La virbala, burga. Mirchi, burga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ ऑयल से। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है? ये
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga.
1: La vieja la murga. Energy, murga. ¿Aló? ¿Aló?
2: Sir, very good evening. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
2: बात है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? नहीं, क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे ही कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: मैं पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल
2: है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने
1: पड़ेंगे. हेलो.
2: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई? देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अभी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर

0: Mirchi.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabbala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनशाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए.
3: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: ये पटाख.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: कुड़िए ने मेरे दिल विच वस जा कुड़िए ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: अर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका और अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। सम स्पेशल सरप्राइजेस, ऑल दिस एंड मोर, तो सीधा शुरुआत करते हैं हफ्ते के काउंटडाउन के विद गाना नंबर 10। मिका सिंह दैया द रैपर का गाना, गाने का नाम है छोरी। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से ये गाना दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। छोरी ऑन नंबर 10, ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 10।

0: आदित्य रिखारी, रैबिट और कुटले खां का गाना, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए। दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 9 पर हमने आदित्य रिखारी एंड कुटले खां को एक गाने में सुना। आदित्य रिखारी हु इज द पॉप सेंसेशन, कुटले खां राजस्थान के फोक म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो इतने अलग दुनिया के आर्टिस्ट सिर्फ कोक स्टूडियो ही एक गाने में ला सकता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक नई एंट्री है एंड दिस इज अ डेब्यू जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बिकॉज अदनान सामी इज बैक विद अ न्यू सॉन्ग। अदनान सामी के गानों के बारे में हम जैसे ही सोचते हैं तो वो पावरफुल रोमांटिक बैलेड्स याद आते हैं।

0: बट जो उनका नया वाला गाना है, इट्स अ हाई एनर्जी पॉप प्रोडक्शन, रस्टिक इंडियन टेक्सचर्स भी हैं, थोड़े राजस्थानी इन्फ्लुएंसेस भी हैं, बट इट्स ऑल दैट अदनान सामी इज वेरी वर्सेटाइल. गाने का नाम एक्चुअली लिपस्टिक है. पूरा गाना हम अभी आपके लिए प्ले करने वाले हैं. दिस सॉन्ग इज ट्राइंग टू ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड लिपस्टिक, स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में, जहाँ थोड़ी बोल्ड लिपस्टिक लगा लिया, रेड शेड ज्यादा रेड हो गया तो ऑफिस में ही चार लोग टोक देते हैं. गाने की जो म्यूजिक वीडियो है, फीचर्स वुमेन ऑफ ऑल जेनरेशंस, ओल्डर वुमेन, स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स, यू विल सी समवन यू नो इन दिस म्यूजिक वीडियो. बट द बेस्ट पार्ट इज हाउ अदनान सामी इज फुली प्लेइंग अ कैरेक्टर इन द वीडियो. एक्सप्रेसिव स्टाइलिंग, वेरी ट्रांसफॉर्म्ड लुक, उनके सुरमे पे ध्यान देना. बट गाना उन्होंने बहुत फन बनाया और बहुत वक्त के बाद हम एक ऐसा हाई पेपी पॉप गाना सुन रहे हैं फ्रॉम अदनान सामी. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. नया नवेला गाना डेब्यू कर रहा है सीधा ऑन गाना नंबर 8, अदनान सामी की कॉम्पोजिशन, अदनान सामी की आवाज में, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: Blana, Indie Top 10, Kanika ke saath, on Mirchi, It's Hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ये पक्का।
0: Gana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.

0: मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिटर और एंड स्वरा वर्मा की आवाज। गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ का गाना डीलर, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन नीचे ड्रॉप करके ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। अभी के अभी कनेक्ट करो, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। दरअसल आर्टिस्ट जो सिर्फ गाने नहीं बनाते हैं, वो प्रॉपरली अपने गानों से ऑडियंस की अटेंशन को होल्ड करना जानते हैं। And one of such artists is Himesh Reshammiya. He's back with a new song. Unke naye gaane ka naam hai Sharab. I really think Himesh could have chosen some other word for the song. Mujhe thodi problem hai. Lekin meri is problem se mujhe is gaane ke baare mein kya feel hota hai, wo change nahi hota. Interesting baat to ye hai that this song is absolutely through and through Himesh, but also sounds very new. Wahi larger than life energy hai. Kaafi dramatic sa romance hai. Ek instantly pakad mein aa jaane wala hook. But there is some twang in the song. That Rajat Nagpal effect aap को सुनाई देगा, जैसे कि किसी गाने को एकदम ग्लॉसी कोट कर दिया है। राणा सोतल के लिरिक्स हैं, द वीडियो फीचर्स मनुषी चिल्लर, सो द ओवरऑल पैकेज इज इनक्रेडिबल। इनफैक्ट आई वुड गिव थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अश्काय हु मेड मी सी द म्यूजिक वीडियो, एंड देन मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इस गाने के बारे में बदला, बिकॉज जब मैंने सिर्फ ऑडियो सुना आई थॉट यार ये गाना कैसे हिमेश के फैंस को पसंद आएगा, बट देन दैट्स व्हाट हिमेश रेशमिया डज, किसी ना किसी तरीके से हमारा अटेंशन ग्रैस्प कर लेते हैं। एंड आई स्वेयर जब मैंने म्यूजिक वीडियो के साथ ये गाना सुना तो मैंने वापस रिपीट किया और वापस म्यूजिक वीडियो देखा। चाहे आप सीरियसली सुनो, नॉस्टैल्जिक होके सुनो, आयरोनिकली सुनो, यू विल टॉक अबाउट हिमेश रेशमिया एंड हिज न्यू सॉन्ग। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हिमेश रेशमिया का गाना, रजत नागपाल, राणा सोतल की कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, गाने का नाम है शराब। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: हमेशा शर्मिया की आवाज में दैट वाज शराब ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट। अश्काई और मैं बेट कर रहे हैं दैट ये गाना कब डेब्यू करेगा, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। मेरे को लगता है कि ये गाना नंबर 5 से 7 के बीच में डेब्यू करेगा। व्हाट डू यू थिंक? If you want to predict, at RJ Kanika पर आके मुझे बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, रांझा is playing right next for you on गाना नंबर 5। You're listening to गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। Enjoy।
1: Number 5।

0: क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट हिट हिट हिट गाना,
3: हिट गाना, हिट गाना।
1: Radio Mirchi, New York. It's hot.
4: Ghana Indie Top 10.
5: Kanika ke saath on Mirchi.
6: Number

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में।

0: मौजला 21 का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर 25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली जेन्युइनली आई स्वेयर प्रॉमिस आई बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर मैं 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने आपके साथ शेयर करती हूँ। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है तेरा चेहरा बाय द वन एंड ओनली अदनान सामी। ये गाना साल 2002 में रिलीज हुआ था, अदनान सामी की एल्बम तेरा चेहरा का ही पार्ट है। म्यूजिक खुद अदनान ने कंपोज किया था, लिरिक्स समीर के हैं एंड इस गाने की वीडियो में है रानी मुखर्जी। उस साल की सबसे सक्सेसफुल पॉप एल्बम्स में से एक थी तेरा चेहरा। आई रिमेम्बर इस एल्बम के थ्रू ही हम अदनान सामी की दुनिया से इंट्रोड्यूस हुए थे एंड कुछ इतनी मैसिव कोलैबोरेशंस थे इस एल्बम में विद रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन। बट जो ये गाने हमें आज याद हैं, ना ही ये कोलैबोरेशंस की वजह से हैं, ना ही उन गाने म्यूजिक वीडियोस की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, इट्स बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन। गाना नहीं भाई, अदनान सामी पूरा माहौल बनाते थे। उनका हर गाना एक मिनी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता था। पियानो, स्ट्रिंग्स, वो स्ट्रेच्ड आउट लॉन्गिंग इन हिज वॉइस, ऐसा लगता है कि बस गाना आपके लिए गा रहे हैं। स्पेशली द सॉन्ग तेरा चेहरा, द लिरिक्स, ये जमीन रुक जाए आसमां झुक जाए, इतना ड्रामा, उफ। एंड अदनान सामी की वॉइस जस्ट टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, चीजी एंड हाउ। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, अदनान सामी एट हिज अल्टीमेट बेस्ट, साल 2002 का गाना अदनान सामी की आवाज में, दिस इज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।

मैन ओ मैन, तेरा चेहरा इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स दैट नॉस्टैल्जिया नहीं बल्कि एक पूरा जमाना याद आ जाता है. अदनान सामी की आवाज में दैट वॉज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड दिस इज वेयर गाने शेयर करने की बारी आती है. 90s या 2000s का वो कोई भी आइकॉनिक इंडी पॉप गाना जिसको आज भी आप सुन के फुल नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, हमसे आके शेयर करो. एट आरजे कनेका पर अपना रिकमेंडेशन दो. अशकाय मेरा साउंड प्रोड्यूसर और मैं, हम बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं आपके रिकमेंडेशंस के. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 3. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है अर्ज किया है. अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। नाउ गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर आई टेक यू टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। इस हफ्ते गाना नंबर 10 पर था मीका और दया द रैपर का छोरी। देन आदित्य रेखारी रैवट और कुटले खा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पे डेब्यू किया अदनान सामी के गाने लिपस्टिक ने। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 7। जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डाब दबीना। देन मिट्टा रौर का शीशा ऑन गाना नंबर 6।
3: तेरे आगे पीछे लंके सुन दो ना छोरी का हर रंग।
2: दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 5। करण औजला 21-25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। संजू राठौर का बैंग गर्ल्स ऑन गाना नंबर 3। फिर हमने सुना अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
4: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
2: It's time for the numero uno song of the week, yani is hafte ka gana number 1. This song is absolute treat. What a beautiful mix in this countdown. Gaane ka naam hai Bairan, ek Haryanvi song jo mujhe pata hai ki aapke Instagram ke har teesre scroll mein aap ye gana sun rahe hain. Banjare ki composition, unhi ke lyrics, unhi ki awaaz. Bairan is playing right next for you on gana number 1. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 1.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड डिसाइड करता है कि इस हफ्ते कौन सी कहानी ट्रेंड करेगी, कौन सा हीरो मास्क लगेगा, कौन सा ट्रेलर इंटरनेट तोड़ देगा एंड कौन सा गाना शादियों में बजेगा। लेकिन असली सवाल हमेशा सेम रहता है, इस शोर में क्या टिकने वाला है? क्योंकि हाइप तो बहुत चीजों की बन जाती है लेकिन लेगेसी बहुत ही कम की होती है। एंड इस वक्त हिंदी सिनेमा एक अजीब से फेज में है। सुपरस्टार्स अब भी बड़े हैं लेकिन ऑडियंस उनसे भी बड़ी हो चुकी है। हम इंस्टेंटली जज करते हैं, इंस्टेंटली ट्रोल करते हैं, इंस्टेंटली वर्शिप करते हैं। एक रील करियर बना देता है और एक फ्राइडे नैरेटिव बदल देता है। लेकिन फिर भी हर हफ्ते कुछ गाने ऐसे आते हैं जो शोर को काट देते हैं, कुछ फिल्म्स जो सिर्फ चलती नहीं कल्चर बन जाती हैं, एंड कुछ आवाजें जो प्रूव करती हैं कि बॉलीवुड अभी भी दिल से जिंदा है। तो चलो इस हफ्ते के बिगेस्ट सॉन्ग्स, बिगेस्ट स्टोरीज और बिगेस्ट बॉलीवुड पल्स को डीकोड करते हैं। दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड आई एम योर होस्ट सुरेन सुंदरम। एंड गाड़ी शुरू होती है विद द मोस्ट डोमिनेंट फिल्म एंड उसका ये डोमिनेंट टाइटल ट्रैक आपने सुना है, बहुत बार सुना है।
3: नंबर 20।

बॉलीवुड में अगर किसी कंपोजर ने हमें ये सिखाया है कि म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं, फील किया जाता है, then it has to be A.R. रहमान। लेकिन रहमान साहब का म्यूजिक आजकल पहले जैसा इंस्टेंट हिस्टेरिया क्रिएट नहीं करता, और शायद वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो डिजाइन है। क्योंकि रहमान साहब के गाने फास्ट फूड की तरह, बर्गर्स, पिज्जाज की तरह बिल्कुल नहीं होते। दे आर लाइक स्लो पॉइजन। पहली बार सुनो कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, दूसरी बार सुनो तो इंट्रीगिंग लगते हैं, और फिर एक दिन अचानक गाना आपके अंदर घर बना लेता है। रहमान साहब मेलोडी को स्पून फीड नहीं करते, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। टेक्सचर्स, साइलेंसेस, ट्रेन साउंड, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्गिंग, और इसीलिए उनके गाने वायरल कम होते हैं, डिस्कवर ज्यादा किए जाते हैं।

0: इनिशियली लोग बोल रहे थे ये तो बहुत डीप है, आज ये एक इमोशनल एंथम बन गया है। और अब मस्कारा को देखो फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, इम्तियाज अली, दिलजीत दोसांझ, रहमान साहब, इरशाद कामिल, ये कोई लाउड चार्ट बस्टर नहीं है, ये वो टाइप का गाना है जो शायद 3 महीने बाद सडनली आपको हिट करेगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग म्यूजिक ट्रेंड यही होने वाला है, द स्लो बर्न एल्बम्स, एल्बम्स जो पहले ग्रो करती हैं और फिर एक्सप्लोर करती हैं। एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ विद चांद मेरा दिल, पहले लोग बोल रहे थे यार अच्छी एल्बम है, अब हर हफ्ते एक नया गाना इमर्ज हो रहा है और इस वक्त द लेटेस्ट वन इज मेकिंग सीरियस नॉइज। फ्रॉम चांद मेरा दिल, कंपोज बाय सचिन जिगर, राघव चैतन्य और जुनीता गांधी की आवाज में, दिस इज खासियत, डेब्यूइंग ऑन नंबर 18।
1: नंबर 18।

0: कैंटीन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो हेलो
2: सर वेरी गुड इवनिंग थैंक्स फॉर
1: हाँ बोलिए
2: सर आई एम सो सॉरी सर बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का
1: बनवाया था भैया क्या हो गया नहीं क्या बात
2: सर आई एम सो सॉरी पूरा बताइए
1: क्या कह रहे हो भैया कहाँ
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे यूज किया आपने कुछ परचेजिंग करी उससे
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो क्या कर रहे हो
2: आई एम सो सॉरी सर ऐसी कभी कभी हो जाता है सर सर उससे कुछ परचेज किया आपने
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया हेलो
2: आई एम सो सॉरी सर सर मैं आपसे कहना चाह रहा था सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था सर बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे कुछ खरीदा था
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा भैया पागल है क्या
2: आई एम सो सॉरी सर आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे
1: पागल
2: अब तो देने पड़ेंगे सर
1: हेलो
2: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे
1: कौन बोल रहा है विपिन
2: नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा बैंक का खाना खाना पड़ेगा बैंक के पैसे देने पड़ेंगे
1: पागल के दिमाग खराब है क्या पैसे देने पड़ेंगे
2: अब तो फंस गए सर
1: हेलो
2: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने एक मजाक किया छोटा सा मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था आपका मुर्गा बन गया है
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई देने पड़ेंगे
2: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे आप अब भी नहीं समझे मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
2: हाँ जी अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 70

जाइए सजना उस फिल्म से है जो आपको OTT पे दिखने वाली है वेरी वेरी सून। धुरंधर 2 इज कमिंग। और ऑनेस्टली अगर आप 2026 में म्यूजिक इंडस्ट्री को समझना चाहते हो तो चार्ट्स मत देखो, इंस्टाग्राम खोलो, क्योंकि आजकल गाने हिट रेडियो पे नहीं रील्स पे दोबारा पैदा हो जाते हैं। कभी कोई 20 सेकंड का हार्ट ब्रेक एडिट सोशल मीडिया पे डालता है या डालती है और अचानक एक पुराना गाना फिर से दुनिया का फेवरेट इमोशन बन जाता है।

और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जेंजी को नॉस्टैल्जिया भी चाहिए मगर बिना उस जमाने को जिए। चिट्ठियों कहां सुनी है becomes the new blockbuster moment. 90s और early 2000s का म्यूजिक तो especially अब second innings खेल रहा है, क्योंकि उस वक्त melodies बनती थी, content नहीं। और Bollywood obviously से notice कर रहा है, इसलिए हर दूसरी फिल्म एक पुराने गाने को नए packaging में लाने की कोशिश कर रही है। Sometimes this works, sometimes हमारी memories खराब होती हैं। And अब जो गाने आ रहे हैं उनमें एक वाइब तो है, there's an old school swagger, there's a little bit of nostalgia, थोड़ा नया तड़का है, लेकिन जो अगला गाना है ना, it's not working that magic for me. Maybe because the movie has not gotten me excited. गाना नंबर 15 इस हफ्ते on the Mirchi Top 20 is the reimagined रूप दी रानी from पति पत्नी और वो दो। Number 15.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: इस गाने ने नंबर 14 पर, और शायद इसीलिए म्यूजिक का साइंस अब पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि कब क्या कनेक्ट कर जाए नोबडी नोज एनीमोर। और इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए था कॉकटेल का वो गाना जब तलक। यार जरा सोचो, अरिजीत सिंह, प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य, एंड देन यू गॉट शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन। ये लाइनअप देख के तो लगता है कि गाना चार्ट पे आएगा नहीं, सीधा कब्जा कर लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गाना आया तो सही, लेकिन इंपैक्ट नहीं बना। इनफैक्ट टॉप 10 तक भी नहीं पहुंच पाया और क्वाइटली इस काउंटडाउन से एग्जिट मार चुका है। और शॉक इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि शाहिद और प्रीतम दा का म्यूजिकल पार्टनरशिप तो हिस्टोरिकली लीथल रहा है।
1: साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे।
0: ये वो कॉम्बो है जो फुल मैडनेस को भी एक म्यूजिकल इवेंट बना देता था। इसके बाद जरा सा मूड स्विच कर लो।

बॉलीवुड का मूड कितनी जल्दी स्विच होता है। अभी जो गाना आपने सुना प्रेम की लीला फ्रॉम कृष्णावतारम, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और जावेद अली ने। ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन है, ओल्ड स्कूल डिवोशन, नो ईडीएम ड्रॉप्स, ना कोई फोर्स्ड कूलनेस, बस सुर हैं, भाव हैं और सिंसियरिटी है। एंड देखो, ऑडियंस ने उसे सीधा दिल में जगह दे दी। डेब्यू किया

0: एंड सडनली वो सेम डुओ हार्टब्रेक को इतना सॉफ्ट बना देता है कि आदमी खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देता है, वो भी बिना किसी रीजन के. एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट दिस सॉन्ग.
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही.
0: बस यार, ये गाना तो कल्चरली इमॉर्टल है. ऐसे गाने रिलीज नहीं होते, अडॉप्ट किए जाते हैं. इसलिए जब तलक का इतनी जल्दी फेड हो जाना जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड था एंड मेरे लिए काफी शॉकिंग भी. लेकिन फ्रीदंदा का गेम खत्म समझना गलती होगी. भूत बंगला का राम जी आके भला करेंगे नंबर 13 पर पहुंचा है इस हफ्ते. लेकिन कॉकटेल का जो अपकमिंग गाना है माशूका, वो मैंने सुना है एंड दैट वन साउंड्स फार मोर डेंजरस. लेकिन अभी फ्रॉम एन ईरा व्हेन शाहिद कपूर एंड प्रीतम दा सिंपली कुड नॉट मिस, ये वाला गाना है फ्रॉम मौसम, जिसे गाया है शाहिद मालिया ने. रब्बा मैं तो मर गया ओए, माय पिक ऑफ द वीक.
2: पिक ऑफ द वीक.

0: बॉलीवुड में बहुत चीजें समझ आती हैं, फ्लॉप फिल्म समझ आती है, फ्लॉप ट्रेलर समझ आता है, लेकिन एक चीज जो जेन्युइनली समझ नहीं आती है, इनफैक्ट शॉकिंग लगती है, वो तब होता है जब धर्मा प्रोडक्शंस का म्यूजिक ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं करता। अभी जो आपने सुना चांद मेरा दिल, वो सच में बहुत अच्छा गाना है। एल्बम भी बुरी नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट सरप्राइजिंगली ठंडा है। और ये बात इसलिए स्ट्रेंज लगती है क्योंकि धर्मा और बॉलीवुड म्यूजिक का रिश्ता सिर्फ सक्सेसफुल नहीं रहा, वो हिस्टोरिक रहा है यार। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, ये जवानी है दीवानी है, दिल है मुश्किल, कपूर एंड सन्स, टू स्टेट्स, राजी, लिस्ट बहुत लंबी है। एंड ये सिर्फ एल्बम्स नहीं थी, ये लाइफ के स्टेजेस थे, लाइफ के लेसन थे। कॉलेज रोमांस चाहिए तो धर्मा का साउंडट्रैक, शादी में डांस करना है तो धर्मा का साउंडट्रैक, हार्ट ब्रेक हुआ है तो धर्मा का साउंडट्रैक। और इसी बारे में करण जौहर ने भी एक बहुत ही कमाल की बात बोली।
1: I'm really glad that Dharma Productions has a great repertoire of work when it comes to our music. I think it's not that I have a musical mind or I can sing or I can play any instrument. I think because I grew up on the fodder of Hindi film music, it's given me an instinct to decide which song works and which one doesn't. Very honestly, I'm very fortunate that a lot of our music has connected with millions of people across the world and most of our albums have been immensely successful.
0: मैं करण से 100% agree करता हूँ। करण का रियल सुपर पावर डायरेक्शन नहीं है, म्यूजिक को पहचानने का इंस्टिंक्ट है, वो गट फीलिंग है, वो समझते हैं कौन सा गाना लोगों के इमोशंस में घुसेगा। तो फिर सवाल ये है, क्या ऑडियंस का टेस्ट इतनी जल्दी चेंज हो रहा है या बॉलीवुड अब ऑडियंस से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगा है? क्योंकि पहले गाने 6 महीने चल जाते थे, आज 6 दिन सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। और आयरनी देखो ना, इंटरनेट पे जो गाना हर जगह बज रहा था वो किसी मेगा लेबल स्ट्रैटेजी की वजह से वायरल नहीं हुआ, वो 2 भाइयों की वजह से वायरल हुआ, एक रॉ इंटरनेट इमोशन से हुआ। और अब वही गाना ऑफिशियली बॉलीवुड में एंट्री मार चुका है। इस हफ्ते गाना नंबर 11 इस फिल्म पति पत्नी और वो दो, हमने वही दिल लगाया बाय द मंडल ब्रदर्स।
2: नंबर 11

0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: This is something

0: वो नहीं, ये वो टाइप का गाना है जिसका फ्यूचर चार्ट्स पे डिसाइड नहीं होगा, टाइम डिसाइड करेगा। और सच कहूं तो मुझे पूरा यकीन है कि इस हफ्ते बहुत लोगों ने ये गाना स्किप तक कर दिया होगा, क्योंकि हम ऑडियंस अब पेशेंस खो चुके हैं। एक्चुअली पेशेंस नहीं, हम टेस्ट खो चुके हैं। हम म्यूजिक को कंज्यूम करते करते करप्ट हो गए हैं। हमें इंस्टेंटली हुक चाहिए, हमें बीट चाहिए, ड्रॉप चाहिए, रील वाला मोमेंट चाहिए। और अगर गाना 15 सेकंड में हमें डोपामीन हिट नहीं दे रहा है तो हम प्रेस करते हैं नेक्स्ट और फिर बोलते हैं यार रहमान साहब पहले जैसे नहीं रहे। रियली आदमी आज भी ऐसी कॉम्पोजिशंस बना रहा है जिनको समझने के लिए शायद थोड़ा सा इवॉल्व होना पड़ेगा। वो नहीं जैसे गाने को देखो, स्लो बैलेड की तरह शुरू होता है, फिर धीरे से हार्ट ब्रेक में टूटने लगता है, फिर मेलोडी शिफ्ट हो जाती है और एंड इट्स प्योर सूफी ट्रांसेंडेंस। और उस पूरी जर्नी में आदित्य आरके की आवाज, यार क्या वल्नरेबिलिटी है। दिस इज नॉट प्लेलिस्ट म्यूजिक, दिस इज अकेले बैठो और फील करो वाला म्यूजिक। और इसी बारे में इम्तियाज अली ने रहमान साहब को लेकर एक ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन बताई थी।
1: क्यों ऐसा होता है कि कोई भी गाना आप सुन ले यार रहमान का, ऐसा नहीं है कि उसमें उन्होंने कोई यूनिक चीज नहीं की हो। हर गाने में कोई ना कोई नई चीज जरूर होती है। कोई भी गाना आप नहीं कह सकते कि यार इसमें कोई खास बात, हर गाना रहमान साहब का। मगर एक बात है, ही नेवर लाइज। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज क्वालिटी अबाउट यार रहमान। वो कभी ना जो भी कुछ कहते हैं ना वो सच में कहते हैं, वो सच ही होता है उनके लिए। उस जेन्युइननेस की वजह से भी कुछ शायद ऐसा होता है कि कभी वो बगैर जेन्युइनिटी के कोई काम नहीं करते, तो शायद वो चीज भी ट्रांसलेट जरूर होती ही होगी।
0: दैट लाइन हिट मी हार्ड कि रहमान साहब कभी झूठ नहीं बोलते। मे बी इसलिए उनका म्यूजिक हर किसी को इंस्टेंटली समझ नहीं आता। सच को प्रोसेस करने में थोड़ा वक्त लगता है। और आयरनी ये है, इसी काउंटडाउन पे धुरंधर का मैं और तू गाना है, विच इज ऑन नंबर 9। इट्स गॉट एन इजी वाइब, इट्स एनर्जेटिक, इट्स इंस्टेंटली कैची। एंड फिर नंबर 8 पर है व्याह करवा दो जी, मिक्का सिंह और आशीष कौर की आवाज में। फुल एनर्जी, फुल शादी वाला मोड। क्या लोग नाचेंगे? 100%। लेकिन क्या 3 महीने बाद ये गाना याद रहेगा? आई डोंट थिंक सो। और वही डिफरेंस होता है पॉपुलर म्यूजिक और टाइमलेस म्यूजिक में। गाना नंबर 8 इस हफ्ते, ब्याह करवा दो जी, प्रभ है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 9।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर सेवन

सैयारा इज वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स और इसी हफ्ते मैंने नेटफ्लिक्स पे एक और फिल्म देखी कर्तव्य and I genuinely did not expect it. Saif Ali Khan इस फिल्म में outstanding है यार. सच ये है कि Bollywood में कुछ actors हैं जिनको देख के लगता है कि शायद इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऑटो तक नहीं लिया होगा. और फिर वही बंदा जब एक देसी यूपी बिहार का पुलिस वाला बनके स्क्रीन पे आता है और आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका ठहराव, उसकी आंखों की थकान बिलीव कर लेते हो ना, वो होती है एक्टिंग. और सैफ ने ये बार बार किया है. ओमकारा हो गई, लाल कप्तान, बीइंग साइरस. बंदा रिस्क लेता है और फेल भी होता है कभी कभी, लेकिन सैफ नेवर प्लेज इट सेफ. एंड सैफ के साथ हैं संजय मिश्रा. यार क्या एक्टर है. वो एक्टिंग कहाँ करते हैं एक्चुअली, वो तो बस हैं. ऐसे लोग परफॉर्म नहीं करते, वो हवा बदल देते हैं. एंड फिर इस पिक्चर में देखे सौरभ द्विवेदी, वही अपने लल्लन टॉप वाले. और इंटरनेट ने भाई साहब उन्हें ऐसे तोड़ा है ना, जैसे वाइवा लेने वाले प्रोफेसर को अचानक एनुअल डे पे नाचने के लिए बोल दिया हो. देखिए क्रिटिसिज्म देना आसान है, इनफैक्ट बहुत आसान, हम सब करते हैं, मैं भी करता हूं. लेकिन फिर खुद कैमरा के सामने आके ऐसे परफॉर्म करना जैसे स्कूल असेंबली में लास्ट मिनट पे किसी बच्चे को रोल करने के लिए बोल दिया हो, वो डेंजरस गेम है. सोशल मीडिया इसलिए इतना रूथलेस है क्योंकि ऑडियंस हिपोक्रेसी को इंस्टेंटली पकड़ लेती है. और ये जरूरी भी था, फिल्म को क्रिटिसाइज करना और खुद एक्टिंग करने में वही डिफरेंस है जो एक पॉडकास्ट में बैठ के क्रिकेट के बारे में बात करना है और एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बाउंसर को फेस करना है. लेकिन यस, इन स्पाइट ऑफ सौरभ द्विवेदी, प्लीज वॉच दिस फिल्म कर्तव्य फॉर सैफ अली खान एंड संजय मिश्रा. इसी बहाने एक अच्छा गाना सुनाने का भी मौका मिल गया है. सैफ की एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसने जेन्युइनली ऑडियंस को शॉक किया. इट वाज कोल्ड, इट वाज मेनेसिंग, इट वाज अनप्रेडिक्टेबल. ये अब भी मेरी फेवरेट फिल्म है. ओमकारा से ये गाना है नमक, रेखा भारद्वाज जी की आवाज में. टॉप 20 रिवाइंड.

0: चिकन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हेलो
2: सुमन जी गुड इवनिंग इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ आपका नेट काम नहीं कर रहा था आपने कंप्लेंट करी है
1: हाँ जी हाँ जी
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं कंप्यूटर के पास हैं
1: एक सेकंड आप प्लीज होल्ड करेंगे मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ
1: हाँ जी हेलो
2: हेलो क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ
1: सुमन शर्मा दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है बस इसमें गूगल खुल जाता है तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें
2: कोई वो सारी चीजें हो जाएगी आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ फुल एड्रेस
1: तो इंटरनेट चलता नहीं है ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको
1: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना इसलिए हम वही मतलब कंफर्म
1: मेरा सनशाइन कैंसर है प्रॉब्लम क्यों हो रही है मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला
2: वो ठीक हो जाएगा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम ये इंटरनेट का कनेक्शन है आप मेरे को क्यों बता रहे हो ब्लड ग्रुप बताइए
1: बी पॉजिटिव दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है बाकी तो चला ही नहीं
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ
1: राहुल शर्मा और ये ठीक कैसे होगा मुझे बता दो
2: वही तो मैं आपको अरे मैडम
1: से डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए डिटेल
2: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे मैं सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं
1: क्या
2: नहीं तो मैं अरे मैडम आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा आपका मुर्गा बन गया रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ कभी मुर्गा बने इससे पहले आप
2: दोबारा कॉल करेंगे आपका वक्त लिया आप बड़े अच्छे हैं मैं अभी आपको कॉल बैक
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5

0: कभी कभी एक फिल्म खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। धुरंधर और धुरंधर 2 एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म्स निकली। सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं, कल्चरल टेकओवर किया, मीम्स आए, फैन एडिट्स आए, एक्शन सीन्स वायरल हुए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? डायलॉग्स जो है वो हमारे दिलो दिमाग में घुस गए। और ऑनेस्टली बॉलीवुड को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखो फिल्म्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन याद हमें बहुत कम रहती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, रोजमर्रा की भाषा हुआ करती थी। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। ये लाइन से स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थी, ये इंडिया का पॉप कल्चर सॉफ्टवेयर थी। लेकिन आज 1000 करोड़ की फिल्में आ रही हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही आधे से ज्यादा डायलॉग्स मेमोरी से लॉग आउट कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो फिल्म्स रियलिज्म में इतनी धीमी हो गई हैं कि कोई लाइन हवा नहीं पकड़ती, या फिर हर दूसरा डायलॉग एक मास मोमेंट बनने की इतनी कोशिश करता है कि असली स्वैग गायब हो जाता है। आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे नहीं जाते यार, वो फील होते हैं। और धुरंधर ने हमें याद दिलाया कि बॉलीवुड जब डायलॉग बाजी सही करता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ तालियां नहीं बजाती, वो डायलॉग्स घर ले जाती है। इस हफ्ते का कारण नंबर 4 इज ऑल्सो अ धुरंधर।
1: नंबर 4।

लेकिन अब एक स्पेशल गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसके डायलॉग्स लिटरली इंडियन पॉप कल्चर की परमानेंट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फ्रॉम जब वी मेट, कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखनी है ये भटिंडा की।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 3।
5: वाह,

रूही दसदा ने सिर्फ चार्ट्स क्लाइम नहीं किए, ऑनेस्टली उसने अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस कॉन्फिडेंस को CPR दे दिया है। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशंस थिएटर्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है। धुरंधर 2 द रिवेंज द सेकंड पार्ट, बेसिकली इंडिया में इसके OTT रिलीज का वेट इतना इंटेंस था ना कि लोग लिटरली काउंट डाउन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले एक प्लेटफॉर्म पे आनी थी और फिर 2 हफ्ते बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस भाई EMI लगने लगे थे। और फिर बीच में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया 14 मई को। बस गेम ओवर, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है कि इंटरनेट को ज्योग्राफी समझ नहीं आती। अगर आपकी फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई तो 2 घंटे में वो पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, और वो भी कोई 240 पिक्सल वो सिनेमा हॉल वाला प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं, जिसमें बीच में किसी की परछाई नजर आती है, पिक्चर हिल रही होती है या साउंड बिल्कुल बकवास होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर 4K फाइल। अब तो सोशल मीडिया पे लोग रिव्यूज से ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले लोग पूछते थे कि भाई स्टोरी कैसी है, अब लोग पूछ रहे हैं भाई लिंक है क्या तेरे पास। और ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि एक वक्त था जब पायरेसी कन्वीनियंस की वजह से होती थी, आज पायरेसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। ऑडियंस फिल्म देखना तो चाहती है, इनफैक्ट इमीडिएटली देखना चाहती है, लेकिन अफोर्डेबल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए एक आदमी को 3 ऐप्स, 4 पासवर्ड, 5 सब्सक्रिप्शंस और 15-20 एड से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए पायरेसी फिर से एक डरावना कमबैक कर रही है। और आयरनी देखो ना, जिस फिल्म को लोग इलीगली हंट कर रहे हैं उसी फिल्म का गाना 14 हफ्तों से इंडिया का नंबर 1 गाना बना हुआ है, फ्रॉम धुरंधर शरारत। और ये शरारत सच में महंगी पड़ गई। नंबर 1।

0: The Mania is still on, but Shararat बाकी गानों से ज्यादा पॉपुलर निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। एक और टाइटल ट्रैक है इश्क चला कर है, गहरा हुआ आरी आरी, इनको सुन के लगा था कि ये शायद आगे निकल जाएंगे, बट नो, शरारत इट इज। बढ़े या मेरी थोड़ी ना चलती है, इट इज यू एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम मिर्ची टॉक 20 के एक नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इब्ने इंशा की कलम और जगजीत जी की आवाज में हमने सुनी ये खूबसूरत गजल। और नए साल के इस नए से मिर्ची महफिल में आपका इस्तकबाल करता है आपका ताशी। हाँ जी, और चांद का इस्तेमाल तो आपने कई बार सुना होगा शायरी और कविताओं में, लेकिन आज आपको बताऊं चांद का एक पर्यायवाची, बोले तो सिनोनिम, जिसका इस्तेमाल करके भी कई सारे शेर हुए हैं, और वो लफ्ज है